0: फिर मनु तुनाई दशमा पहा अनु तुनाई दशमा हाता लखांडे रेडियो आईटीएन सेबे श्रीलंकिया हांडे
1: विलाव पासवर देखाए
2: विलाव ओपवेत किन्ह आवे
3: वार्ता पिट वार्ता कबने कोट याते एनएलबी ताना डिता हने लुटराईये राते संवर्धने तक तैनंत शक्तियक्विमिंग उबाद दिन वार रटा दिन वटे ताना